नमो सर्व रंगे, नमो सर्व भंगे, नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तं अवर्णे, नमस्तं अमरणे, नमस्तं जरारंग, नमस्तं कर्तारंग, नमो सर्व तंदे, नमोस्ते अबंदे, नमस्तं निरसाके, नमस्तं निर्वाके, नमस्तं रहीमे, नमस्तं करीमे, नमस्तं अनंते, नमस्तं महंते, नमस्तस्तरागे, नमस्तं सोहागे, नमो सर्व सोखं, नमो सर्व पोखं, नमो सर्व कर्ता, नमो सर्व हर्ता, नमो जोग जोगे, नमो पोग पोगे, नमो सर्व दयाले, नमो सर्व पाले, चाचरी छंद तवे प्रसाद, अरूप है अनूप है अजू है अपू है, अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है, अते है अपे है अजीत है अपीत है, त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है, अनिल है अनाद है अजय है अजाद है, अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है, अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है, अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है, निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है, अलाह है अजाह है अनंत है महंत है, अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है, अगम है अजम है अपूत है अशूत है, अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है, अजीत है अपीत है अबा है अगा है, अमान है निदान है अनेक है फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सर्व माने समस्ती निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे,

नरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगिया नामे समस्ती स्वरूपे, प्रभंगी प्रमाथे समस्ती बेपूते, कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे सुरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे सुरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो वस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तं शनाने, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा साइदानंद सर्वं प्रणासी, अनुपे रूपु अनुपे अरूपे समस्तोल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं परोश पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्तामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग पर्यात छंद, अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ती निदाने, नमस्त्वंग नरनाथे, नमस्त्वंग प्रमाथे, नमस्त्वंग अगंजे, नमस्त्वंग अपंजे, नमस्त्वंग अकाले, नमस्त्वंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चर्पण छंद तो प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत तर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुक्ता सर्वं जुक्ता, सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुवाल शांद त्व प्रसाद, आद रूप्यान आद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्व मांत्र मान देव अपेव्या देवदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जत्र तत विराज ही अवधूत रूप रसाल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख, उदार पुरख उदार मूर्त आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख, देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग, जतर ततर दिशा विशा हुए फैले वन राग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूं न जाए, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, अनेक मूर्त अनेक दर्शन तीन रूप अनेक,
खेल खेलया खेल खेलन अंत को फिर एक। देव पेवना जान ही जे वेद और कतेब, रूप रंग ना जात पात सो जानी कह जेब। तात मात ना जात जाकर जन मरण विहीन, चक्कर बक्कर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जे जाप, आद देव नाद मूर्त था प्यो सवै जे थाप। परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख्या पार, सर्व विश्व रच्यो सुजम पव गण पंजन हार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख्या देश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत लख्या पेश। अंग राग ना रंग जाकै जात पात ना नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम। आप रूपा मीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूपया सूत। अंग ही ना भंग नातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार। सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र ना जान ही जे रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जाकै नेत पाखत नित, कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही वह चित। मद पार छंद तुवै प्रसाद, गुणगन उदार महिमा अपार। आसन अपंग उपमा अनंग, अनपौ प्रकाश निस्दन अनास। आजान बहो शाहान शाहो, राजान राजपानान पान। देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल। रंकान रंक कालान काल, अनपूत अंग आबा अपंग। गत मित अपार गुणगन उदार, मुनगन प्रणाम निरपय निकाम। अत दुत प्रचंड मित गत अखंड, अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म। सर्वा प्रणाडय अंडड बाडय, चाचरी छंद त्वे प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियंग करियंग निरनामे अकामे। पुजंग प्रयात छंद, चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता। चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने, चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती। चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले, चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे। चतर चक्कर माने है चतर चक्कर दाने है, चाचरी छंद। ना सत्र ना मित्र ना परमंग ना पित्र, ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाए। ना चित्र ना मित्र परे हैं पवित्र, प्रथिस अदिस अदृश अकृश। भगवती छंद त्वे प्रसाद कथते, के अछज देस के अबिज पेस। के आ गंज करम के आ पंज भरम, के आ पिज लोक के आ दित सोक। के अवधूत बरन के विभूत करना,

अनेकल तरंग हैं या भेद हैं या पंग हैं, अजीजुल निवाज हैं गुनि मुलुख राज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं, परभुक्त प्रभा हैं सोयुक्त सुधा हैं, सदैवं स्वरूप हैं या भेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं सदैवल्य काम हैं, निर्बाध स्वरूप

अगाधे, सुभंग सर्व भागे सो सर्वा अनरागे, त्रिपुगस त्रिपुगत स्वरूप है, अशेज है, अशूत है, के नरकंग प्रणास है, प्रीत्यल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजाद है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता, सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते, परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे

निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है। भगवती शंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है। हमेशल सलाम है सता समस्तल अकाम है। हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहेब दिमाग है के हुसल चिराग है। के कामल करीम है के राज करहीम है। के रोजी दहिंद है के राज करहिंद है। करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है। गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है। हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है। कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है। अगंजल गनीम है रिजाय करहीम है। समस्तल जुवा है के साहेब के राह है। के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है। के सर्बल गवान है हमेशल रवान है। तमामल तमीज है समस्तल अजीज है। परम परम ईस है समस्तल अदीश है। अदेशल अलेख है हमेशल अपेख है। जमीलन जमाल है अमीकल इमा है। करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है। के अचलंग प्रकाश है कमित्तो सुवास है। के अजब स्वरूप है कमित्तो विभूत है। के अमित्तो पसा है के आत्म प्रवाह है। के अचलंग अनंग है के मित्तो भंग है। मद पहार शांद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम। हर बर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम। हर नर अखंड बर नर अमंड अन पाव्या नाश मुन मन प्रकाश। गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अनशिज अंग आसन अपंग। उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अपंड। जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपव अनास त्रितर तुरास। आजान बाहो एक सदाहो ओवंकार आद कथनी अनाद। खलखंड ख्याल गुरबर अकाल घर कर प्रणाम चित चरण नाम। अनछ जगात आज जना बात अनछंज गात अन रंज बात। अन टुट भंडार अन ठट अपार। आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत। हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद।

है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करणाकार है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, खलखंड से है, परते पर है, करणाकार है, अजपा जप है, थप्पा थप है, अकृता कृत है, मृता मृत है, अमृता मृत है, करणाकृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, मृता मृत है, अजवाकृत है, मृता मृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वं पर है, करणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जपन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध जप तापन है, जप जपन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है।

पाने, नमो कलह करता नमो सात रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो यासे यासे नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे। एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास पास, अनास आकाश अगंज पंज अलख पख, अकाल दयाल अलेख पेख, अनाम काम अगा अटा, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, नारागे नरंगे नरूपे नरेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे। भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेपूते, सदा सहिदानंद सतरंग प्रणासी, करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब बेपूते गजाय गगनी में, हरियंग करियंग करीमुल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, सुजम पावसवंग सर्वदा सर्वजुगते,

ओम श्री साईराम। परम श्रद्धेय भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूं कि इस मंगल अवसर पर मैं भक्ति के कुछ स्वर पुष्प बाबा के चरणों में अर्पण कर रही हूं। सबसे पहले राग यमन में मैं मंगलदीप प्रज्वलित करती हूं। तू प्रेम का सागर बन जा, तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं, मैं मंगलदीप जलाऊं।

अब एक संत मीराबाई का भजन प्रस्तुत कर रही हूं। प्राणा ने विष का प्याला भेजा है मीरा के लिए और मीरा कहती है,

0: you.
1: Very nice, very soulful. Dear listeners, we are talking to Deep Raj Rai, a 12-year-old singer from Gangtok Sikkim. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि दीप राज राय ने इंडियाज गॉट टैलेंट में सबसे पहले यही गाना गाया था इस आलाप के साथ और इसके बाद भजन गाया था. तो आप बताइए, आपने ये गाना क्यों चुना? वॉज देर अ रीजन दैट यू डिसाइडेड टू पिक दिस पर्टिकुलर भजन टू सिंग एट इंडियाज गॉट टैलेंट?
0: मेरा जो एक सपना था और आपको मैंने पहले ही बताया, और मैं स्वामी का बहुत बड़ा भक्त हूँ.
1: अच्छा, तो मैं आप 12 साल के हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, छोटे से हो.
0: और मैं स्वामी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे भी जो मोमेंट्स थे जब स्वामी ने मुझे हेल्प किया.
1: अच्छा,
0: और मुझे इसीलिए मुझे एक सोच आया कि मैं स्वामी का भजन फर्स्ट में गाऊं.
1: अच्छा, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो आप बाबा के इतने बड़े भक्त और स्वामी ने आपको बहुत समय मदद की, आपकी सहायता की, क्या हुआ था?
0: जब भी मैं कल भी गा रहा था तो बहुत मेरे गले पे थोड़ा सा बैठ गया था, तभी मैंने स्वामी को प्रे किया, स्वामी प्लीज सिंग थ्रू मी, और उन्होंने मुझको बहुत हेल्प किया.
1: अच्छा, प्रायर टू योर ज्वाइनिंग दैट कॉम्पिटिशन, हाउ डिड यू डिवेलप सच फेथ इन स्वामी? डिड समथिंग हैपन दैट टोल्ड यू दैट यू नो यू रियली कुड डिपेंड ऑन स्वामी फॉर हेल्प एंड यू वॉन्टेड टू पिक हिज भजन फॉर द फर्स्ट राउंड?
0: या इट वॉज माई स्कूल, मेरे स्कूल
1: साई गुरु को,
0: जी जो साई गुरु के लिए मेरे सब भजन से जो रोज हमारे स्कूल में भजन होता है, तो मैं मेरे स्कूल से भी मुझको बहुत प्रेरणा मिलता है, तो मेरा फर्स्ट क्रेडिट मेरे स्कूल को जाता है.
1: अच्छा, आपको वहाँ गाना कौन सिखाता है? सो दीप राज इज टेलिंग अस दैट द क्रेडिट फॉर हिज टैलेंट फर्स्ट गोज टू हिज स्कूल विच इज द साई गुरुकुल इन गैंगटॉक सिक्किम. सो हु टीचेस यू म्यूजिक देयर?
0: आवर स्कूल ओनली टीचर्स मी.
1: यू हैव अ म्यूजिक सर और अ म्यूजिक मैम?
0: Yeah.
1: What's his or her name?
0: Geeta Sharma. And no, but all our teachers, they all teaches us singing bhajan, but they are the main who teaches us.
1: Very nice. So have you been a Balvikas student? आपने Balvikas attend किया है बचपन से?
0: जी.
1: मजा आता है Balvikas में?
0: जी.
1: You enjoy it a lot, huh?
0: Yeah.
1: Okay. दीप्राज, आप हमें बताइए, आपने कौन कौन से जो भी गाने गाए कैसे चुने? आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया था मूवी का, आस पास है खुदा, वो थर्ड राउंड में आपने इंडियाज गॉट टैलेंट में गाया था.
0: जी.
1: आपने किस बेसिस पे केसरिया बालमवा या मितवा किस बेस पे चुना थे गाने?
0: एक्चुअली आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर, सो मुझे पता नहीं है.
1: अच्छा, तो किसने, पापा ने डिसाइड किया?
0: नहीं, हमारे उधर टीचर होते हैं म्यूजिक टीचर, सो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये गाओ.
1: अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट में म्यूजिक टीचर थे. ओके, सो वी जस्ट हर्ड फ्रॉम दीप राज दैट द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स दैट ही पुट टुगेदर फॉर सब्सिक्वेंट टू हिज फर्स्ट भजन सिंगिंग वर सॉर्ट ऑफ सजेस्टेड बाय द म्यूजिक टीचर एट इंडियाज गॉट टैलेंट. और आपने कल वही गाने यहां भी गाए थे?
0: नहीं.
1: यहां कौन कौन से गाने?
0: केसरिया बालम.
1: वो थोड़ा सा एक लाइन सुनाएंगे?

0: थैंक यू.
1: बहुत अच्छा गाया. आप जब ये गाना गाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? बस मेरी आवाज ठीक निकली या कुछ और भी?
0: जी,
1: आवाज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओके. क्योंकि केसरिया तो वो रंग है जो भगवान बाबा भी पहनते थे ना, ऑरेंज, आप समझते हो ना. हम सबके लिए तो ऐसा लगा भगवान को बुला रहे हो. सो टेल मी, व्हाट वाज द डिफरेंस? हाउ डिड यू फील डिफरेंट व्हेन यू सैंग इन फ्रंट ऑफ द महासमाधि एज कम्पेयर टू व्हेन यू सैंग फॉर द जजेस एट इंडियाज गॉट टैलेंट?
0: मुझे अपने भक्ति अपना बोनी पधारो मारे रेस. थैंक यू.
1: बहुत अच्छा गाया. आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? बस मेरी आवाज ठीक निकली या कुछ और भी?
0: जी,
1: आवाज पे कॉन्सेंट्रेट. क्योंकि केसरिया तो वो रंग है जो

0: वो एकदम सामने बुलाते और कहते मांगो क्या चाहते हो, क्या बोलते आप, क्या मांगते आप?
1: ने तो स्वामी को ही मांगता।
0: What would you say exactly to him? Just for the sake of our listeners, I asked Deep Raj if Baba was sitting in the chair right there and he called him up and after his performance and asked him, what do you want? And he says he would ask for Swami, but exactly what would you say?
1: Swami, I just wanted you in my every field, in my every life.
0: Mm-hmm. Why do you love him so much?
1: Because he is my spiritual inspiration.
0: Oh, he is your spiritual inspiration.
1: मैं जब भी गाना गाता हूँ मैं उनको याद करके गाता हूँ, कोई भी सॉन्ग हो कोई भी भजन हो मैं बस उनको याद करके जाता हूँ।
0: अच्छा एक बात बताइए, जब आपको मैंने पहली बार टीवी पे गाते हुए देखा, मैंने नोटिस किया आपने बाबा जी का ब्रोच लगाया था आपके कोट पे और कैमरा मैन ने एकदम से जूम इन किया और बाबा की हम सबको स्वामी का दर्शन आपके कोट पे मिल गया, वो किसका आइडिया था? हु गेव यू द आइडिया टू वेयर अ सत्य साई बाबा ब्रोच ऑन योर लपेल ऑफ द जैकेट?
1: मैंने खुद ही वो पहना है क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ अपने ब्रोच और मेरे स्वामी को वहां ले जाता हूँ। मैं ऐसा फील कर रहा था कि स्वामी मेरे साथ है और स्वामी मेरे भजन को सुन रहे हैं।
0: ब्यूटिफुल, सो इट वॉज योर डिसीजन बिकॉज यू वॉन्टेड टू फील हिज प्रेजेंस विद यू। दैट सो लवली टू नो फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू टू हैव सो मच फेथ एंड कॉन्फिडेंस। डिड एनी ऑफ द जजेस आस्क यू अबाउट द ब्रोच?
1: किरण मैम, शी जस्ट आस्क्ड वो क्यों आपने पहना है, सो मैंने कहा कि ही इज माई स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन एज ही इज माई गॉड ऑल्सो, सो आई वेयर दिस।
0: And what did she say?
1: उन्होंने बोला ये ब्रोच सत्य साई बाबा का है, तो मैंने बोला जी आपने ये क्यों पहना है, वो बोल रही थी, तो मैंने बोला क्योंकि ये मेरे भगवान इज माई गॉड एंड इज माई स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन।
0: नाइस, ओके। एंड डिड एनीबडी आस्क यू वेयर दैट भजन वॉज फ्रॉम? डिड एनी ऑफ देम नो दिस वॉज फ्रॉम प्रशांति निलयम?
1: नो,
0: दैट डिडंट कम अप इन द कॉन्वर्सेशन। Okay, Deep Raj, you're a 12-year-old suddenly in the spotlight. How does it feel? अचानक अभी तक तो आप एक student थे और अपने समिति में भजन गाते थे, अचानक आपको इतने लोग जानने लगे, अच्छा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है। मैं जो हूँ इधर जैसा भी हूँ जिन हालत में हूँ सब स्वामी ने किया है, ये स्वामी का कृपा है और मेरे स्कूल का भी बहुत बड़ा हाथ है और मेरे सिक्किम गवर्नमेंट का और उधर के सब जनता का, होल इंडिया का बहुत बड़ा थे।
0: आप तो एकदम नेता की तरह बोल रखी हो आप। मगर बिफोर यू शॉट इन टू लाइमलाइट एंड पीपल गॉट टू नो यू, प्रायर टू दैट यू वर अ स्कूल स्टूडेंट, अ ग्रेड 7 स्टूडेंट दैट यू स्टिल आर। व्हाट डू यू लाइक डूइंग व्हेन यू आर फ्री, व्हेन यू आर नॉट सिंगिंग एंड बीइंग अ स्टार ऑन टीवी? व्हाट इज इट यू लाइक डूइंग एट दैट टाइम?
1: आई वॉज जस्ट रियाजिंग एंड प्रैक्टिसिंग।
0: ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यू आर सो डिसिप्लिन, यू आर प्रैक्टिसिंग। सो व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग डू यू लाइक स्पोर्ट्स?
1: Yeah, I like sport.
0: Which is your favorite?
1: Table tennis.
0: Table tennis? Oh, very good. And what's your favorite food?
1: So, there is our special food there in Sikkim.
0: Mm-hmm.
1: So, it's called momo.
0: Oh, momo?
1: Yeah.
0: वो हमारे पुट्टपर्ती में भी मोमोज बहुत मिलते हैं।
1: There's special one.
0: Okay, आपको सिक्किम के मोमो दीपराज को सबसे ज्यादा पसंद है?
1: जी।
0: अच्छा, वेरी गुड। वैसे बाय द वे आपको ये जान के बहुत खुशी होगी हमारे पुट्टपर्ती में बहुत अच्छा मोमो मिलते हैं बहुत सारी जगहों से। और प्रधान सर से बात करते हुए पता चला कि आप इच्छुक हैं बाबा के स्कूल में पढ़ने के लिए?
1: जी, मेरा एक सपना है बाबा के स्कूल में पढ़ने का।
0: क्यों?
1: क्योंकि इधर सबको डिसिप्लिन में रखते हैं तो इधर प्रैक्टिस भी करते हैं, तो मेरा जो गाना है इसको और निखारना चाहता हूँ क्योंकि जब भी कोई फिर से कॉम्पिटिशन होंगे तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा, जैसे सारेगामापा, इंडियन आइडल।
0: जी,
1: इससे मैं बहुत जाने का इच्छा है फिर।
0: सो दीपराज इज फॉन्ड ऑफ द डिसिप्लिन इन द साई स्कूल, दैट्स व्हाई ही इज एस्पायरिंग टू गेट अ सीट इन बाबा स्कूल, राइट? बिकॉज यू एंजॉय डिसिप्लिन। Very unusual for a 12-year-old boy to be so fond of discipline, but you want to hone your musical talent. But then, आपको अगर संगीत में इतनी रुचि है और अगर आप संगीत और स्वर को सजाना चाहते हैं, वो तो आप किसी म्यूजिक स्कूल में भी जाके कर सकते हैं, बाबा के स्कूल में क्यों पढ़ना चाहेंगे?
1: In here, in Baba's school, everybody is going in good path, so I just also wanted to go to good path. If not here, so I couldn't be such discipline, so it's the miracle of Baba, so if I got chance in here in Sai Baba's school.
0: Okay, so have you been praying for admission now?
1: Yeah, I'm praying a lot.
0: Good. Sing and pray. Maybe it'll move Baba's heart more. He likes music. So, Deep Raj, that's very nice to know that you're drawn to Swami's school because of the good

0: path, the good teachings of Baba and the discipline here. That's excellent to know. Now, when you grow up, what is it you want to be?
1: I just wanted to be playback singer.
0: Oh.
1: If my Swami is with me, then he'll take care of it.
0: Mm-hmm.
1: So I just wanted to be playback singer when I grew up.
0: Okay. So, अगर आप बड़े होकर एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हो और आप कहते हो कि अगर बाबा आपके साथ होंगे तो आप बन सकते हो, आप मुझे एक बात बताओ, कभी बाबा का दर्शन आपने कभी किया है जब बाबा की महासमाधि से पहले?
1: जी, बिफोर लास्ट ईयर भी हमारा एक प्रोग्राम था भक्ति समर्पण,
0: आप उसमें आए थे?
1: जी, मैं उस पर भी आया था, स्वामी के पास से देखा तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि अपने भगवान को देखना इट्स पॉसिबल, और वो सपने जैसा लग रहा था, और उधर मैं रोया भी हूँ। सो
0: रोना क्यों, खुशी से आ गया?
1: जी, खुशी के आंसू। सो
0: आपने गाया था उस बार जब आप आए थे?
1: उस बार तो चांस नहीं मिला था।
0: अच्छा,
1: इसीलिए उधर बहुत थोड़ा बहुत दुख भी हुआ था, तो मैंने आज इस पुट्टपर्ती कुरवंत हॉल में गाया तो मुझको एकदम से स्वामी आगे ही बैठे ऐसे मुझको महसूस हुआ।
0: अच्छा, बहुत ही अच्छा है। सो दिस वॉज इन द ईयर 2009 दैट यू हैड कम द लास्ट
1: 2010,
0: एंड दैट्स वेन यू सॉ स्वामी अप क्लोज एंड ही मूव यू टू टीयर्स, द जॉय ऑफ सीइंग हिम। यू वर 10 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, एंड इट वॉज लाइक एक्शन रीप्ले यस्टरडे व्हेन यू सैंग फॉर हिम। ओके, आप हमारे श्रोताओं को बताइए, अगर आपके सामने इस वक्त साक्षात्कार भगवान इस कुर्सी पर बैठे होते जो कि हमारे स्टूडियो में है भगवान की, जहां हमें हमेशा उनकी प्रेजेंस फील होती है और वो आपकी ओर देख रहे होते हैं, आप उनके लिए कौन सा भजन गाते, सुना के बताइए।
1: मैं उनके लिए प्रशांति निलयम गाता, क्योंकि वो इतने अच्छे, इतने पीस, उन पर सो टीयर्स आते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू सिंग प्रशांति निलयम।
0: गो अहेड एंड सिंग इट फॉर हिम, ही इज राइट हियर।

0: आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारै, शिव कर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापै अवरो गावै, मनमुख भगत ना होई। सुर नाल विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांडो त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुमारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागै, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरै तां शब्द विचारे, तां सच पावै कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिया, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुत पावै, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहज सुख पावै, जिनको नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सकै, जो बालक खीर आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिनको कृपा तुम्हारी, रहाओ सनक सनंदन। नारद मन सेवै, अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी। सब जाजक तू एको दाता, मंगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावै कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुड़तारी। मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावै, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवै, ओ मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करतै हर करतै सब गल तारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूद खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस धारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिया, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिया। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिया। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिया। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिया। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। करमन सिर करमा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी। कुदरत कवन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवा कर चौथा। एको अंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंधव पतत पावन देव पैत रास नास कृपाल गुंडित सब स्वामी सेव। हर गोपाल गुर गोबिंद चरण सरण दयाल केशव तार जग पव सिंध रहाओ। काम क्रोध हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार धरणी तार पत राख परमानंद। जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत शेद अहम बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख्यानंत सिमर समर्थ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सह समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाची है रज साध। मोह मिथन दुरंत आसा बासना बेकार रख धर्म परम बिदार मंते उदर हर निरंकार। तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिना ना चीर खल मूड खल मुग्ध मूड कटाक श्री तर पय गुणमतीर। जीवन मुक्त जगदीश जप मानो धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परमहंस रीत। देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान प्रसन्न प्रभ नानक पतत उदार। गुजरी की वार महला तीजा सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। एहो जगत ममता मोवा जीवन की बिद नाहे गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए नानक नदरी मन वसै गुरमुख सही समाए। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार दूजे पाए सुते कवे ना जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेतै शब्द नामी चार है एहो मनमुकाया चार हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया नानक जम मार करे खुआर। पौड़ी अपना आप उपायोन तदो होर ना कोई मता मसूर त्याप करे जो करे सो होई। तदहो आकाश ना पाताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई। ज्योतिष पावे तिवे करे तिस बिनियवर ना कोई श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए ओह अवाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो समय रह समाए अवर दूजा क्यों सेवी है जमै तै मर जाए। निहफल तिनका जीविया जे खसम न जाने अपना अवरी कौ चित लाए नानकेव न जापई करता केती देस जाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरतै सच नानक हुकम बुझ प्रवान होए ता फल पावै सच। कथनी बदनी करता फिर हुकमै मूल न बुझई अंधा कचन कच। पौड़ी संजोग विजोगो पायो न सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर धंधे लाया। माया का मूल रचायोन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावै सतगुर कै पाणै वड्याई पावै नानक आप छोड़ गुर माए समावै। महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवै नानक जिस आप वड्याई देवै। पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखमियत पारी पत्थर पा बोल दिया क्यों तरिये तारी। अंदर भक्ति रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला ਹਮੈ ਛੱਡ ਵਿਕਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੜਾ, ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਏ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂਗਲ ਹੋਏ ਰਹਾ, ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੁੱਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਤਨੀਕਾ, ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਸੁਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਮਨ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਉਮੈ ਗਈ, ਜੋਤ ਰਹੀ ਸਭ ਆਏ। ਇਹੋ ਜੀਉ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਏ ਕੈ ਵਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ, ਗਣਤੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਪਾਈਐ ਦੂਜੇ ਪਰਮੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁੱਝ ਸੱਚ ਸਮੀਤਾ, ਸਬਦੇ ਹਮੈ ਖੋਈਐ ਹਰ ਮਿਲ ਮਿਲੀਤਾ। ਸਭ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਵਿਕਸੀਤਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ ਮਨ ਆਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਆ ਜੁਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਆਏ। ਮਾਇਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਹੈ ਏਕ ਚਸੇ ਮੈਂ ਪਾਜ ਲੈ ਜਾਏ, ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਕੀ ਤਨ ਸਿਆਹੋ ਹੋਏ।
1: After that recital from the Sikh holy book, the Guru Granth Sahib, we now offer you two guitar and voice compositions, recorded specially for you in the Radio Sai studios. The composer is from Russia and has had the good fortune of playing in front of Swami. His first piece is a traditional Russian melody from the 14th century, and the next his own composition.